0: ये पला संसी सहां ला से यो मला शुंसी शुं ला सा से से जिक तंदे मंगशे नंग लो ला तंग रंजु मंगशे नंग लो ला योरे कोशे नंग लो ला टोबर ताको आगे गन ला टोबर छिना तरे छिरे ला ता जिक यांग रंजु जिक जे ला ता जिक गंजो रे जु जिक भला बा ता जिक यांग छानजा सुंग रे दे छिदु बा ता जिक रि दुरेन रे रोतन ना ता यांग जु जिक नंबर 4 वंग ने यहां जिक ओ ते देगे रो तुम ना सम ता यांग सार जुम दे
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས